इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नहीं होता, लेकिन मन में आत्मविश्वास, धैर्य और संतुष्टि हो तो इंसान के दिन अच्छे निकल जाते हैं। तब ऐसे गीत ही हमारी जिंदगी में जीने के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं।

दोस्तों, सूरज की किरणें आशा की उमंग जगा रही हैं एक अच्छी सुबह के साथ, और आपकी दिनचर्या की शुरुआत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए।

दोस्तों, इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये रचना थी उस्तादी उस्ताद से, फिल्म से, उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे वंदे मातरम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी

0: सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर

0: स्थल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9।
1: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जो चीज एक बार चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा? ना पैसा, ना मौका और सबसे इम्पोर्टेंट समय। समय बहुत कीमती चीज़ होती है। टाइम हर किसी को बराबर मिलता है, अमीर को, गरीब को और स्टूडेंट्स को भी सेम 24 आवर्स। अगर आज आप एक घंटा मोबाइल पर वेस्ट कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप अपने सपनों से एक घंटा दूर जा रहे हैं। समय किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें सफल बनाता है। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM Rainbow 101.9 विद मी RJ नम्रता।

समय साइलेंटली चला जाएगा, वो ना आवाज करता है ना वार्निंग देता है, बस आपको हर दिन थोड़ा आगे या पीछे ले जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि समय किसी को रोकता नहीं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है कौन उसे वैल्यू दे रहे हैं और कौन इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए लाइफ में मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है। हर छोटा एक्शन, हर छोटा मिनट एक इन्वेस्टमेंट है। वैल्यू एवरी मिनट, बिकॉज एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि जो समय

0: Hey, very hungry. What's special today?
1: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
2: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavor. From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
3: Jashn e Hyderabad, savor the city's soul.
4: Yes, listeners, we are in the segment called Hello Rainbow. आज का टॉपिक सुनते ही बहुत लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 90s की उन यादों की जो आज भी दिल को गर्माहट से भर देता है। ना स्मार्टफोन्स थे, ना सोशल मीडिया का क्रेज़, खुशियाँ छोटी छोटी बातों में मिल जाती थी। संडे कार्टून्स, गली क्रिकेट, कैसेट वाले गाने और नानी दादी के घर गहर की छुट्टियाँ। तो चलिए यादों की इस खूबसूरत गली में एक बार फिर से चलते हैं। 90s का एक मेमोरी या नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आर 0402323003030, 0402323482 एंड 0402970 4715। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: So there's another caller in the line. कौन है सर, बताइए आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ तेलंगाना से, हैदराबाद से, तलाब कट्टा अमल नगर से, सॉरी.
1: ओके शेर खान जी, बताइए 90s का एक मेमोरी आपसे, लाइक आपका एक मेमोरी अच्छा मेमोरी है जो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं.
2: जी मैडम, पहले सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को आपको प्यार भरा सलाम और आदाब है. अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे. जी मैडम, 90s का मेमोरी है, जैसे मैं बता दूँ आपको, मैं ब्लाइंड हूँ तो मुझे 3-4 साल की उम्र में आँखों में कैंसर हो गया था. तो मेरी आँखें निकाल ली गई थी कैंसर की वजह से. तो 90s का दौर, फिर मैं बचपने में था तो मैं बहुत मतलब इमोशनल था, वो छोटा बच्चा था, रोता था. तब मेरे पापा मुझे बहुत चाहते थे तो मेरे लिए फिर एक दिल्ली से रेडियो लेकर आए. फिर घर में भी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेकर आए जब वो, और मुझे समझाए कि देखो बेटा ये टीवी है, ये रेडियो है, इसमें म्यूजिक आता है, इसमें फिल्म आता है, इसमें सीरियल आता है बोल के. और जो भी सीरियल आते थे पुराने जमाने में दूरदर्शन में, वो सारे सीरियलों को जब भी सीरियल ऑन होता था तब पापा एक चेयर लगा के, कुर्सी लगा के मुझे भी बिठाते थे और वो भी बाजू में बैठ के मेरे को सारा स्टोरी समझाते थे सीरियल का, ये फिल्म का, ये हीरो है, ये फलाना हीरो है, ये ऐसा है, और वो मुझे सारी स्टोरी सुनाते थे. लेकिन जब कभी पापा बिजी होते थे तो मेरे भाइयों को कहते थे कि इसको तुम जो देख रहे है, इंजॉय कर रहे है, इसको भी समझाना. अगर वो नहीं समझाए तो उनकी बहुत पिटाई होती थी.
1: अच्छा अच्छा.
2: हाँ, उनको खाली, वो खाली देखते और मैं कुछ नहीं समझ पाता था, मुझे नहीं बताते थे तो उनकी पिटाई होती थी. और जब वो काम से आते थे मैं घर में भी बैठा हुआ दिखता था उनको उदास, तो वो बाहर साइकिल रखते थे और फिर वो भाइयों को ढूंढ के लाते थे मैदान से और फिर पिटाई करते थे उनकी, इसको अकेला छोड़ के तुम लोग कैसा खेल रहे, वो कैसा इमोशनल बैठा, वो कैसा डिप्रेशन में बोल के. और वो टीवी लाए, फिर रेडियो लाए, रेडियो में मुझे समझा ये रेडियो में गाने आते हैं, यहाँ पे ये आवाजें जो आ रही है ये एक प्रसारण होता है, ऐसा सारी बातें समझाते थे. और एक हमारा हंसता खेलता परिवार था, एक बगीचे की तरह था, हरा भरा, हम सारे भाई बहन, मम्मी पापा सब ऐसे रहते थे. बहुत वो दिन जब याद आते हैं तो बहुत बहुत ये होता है कि आज हम एक जगह नहीं, यहाँ बिछड़ गए, तो वो थोड़ा अफसोस होता है इसका.
1: ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मेमोरी.
2: मैडम वही साउंड की रिक्वेस्ट है आपसे, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में.
1: ओके सर,
2: कहो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो.
1: ओके सर, ओके. यस, फॉर एवरी 90s किड, संडे मॉर्निंग्स हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट. We would wake up early, quickly fresh up and sit in front of the TV waiting for our favorite cartoons and superhero shows to begin. Whether it was Shaktiman, Power Rangers, SPD or The Jungle Book, those few hours felt magical. Missing an episode meant waiting an entire week because there was no YouTube or streaming platform. The joy of watching together with siblings made those mornings unforgettable. Stay tuned to Akashwani FM Rainbow 101.9 with me, RJ Namrita.

0: తర్వాత కార్యక్రమం సందేశ్ టు సోల్జర్ ఢిల్లీ నుంచి రిలే వింటారు.
1: आर्मी सर्विस कोर में थे और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ. हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में.
2: जी.
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं. और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा. और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का. अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंड फादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया.
2: वाह, क्या बात है, क्या बात है. तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए. तो ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा. मेरे को याद है, मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए. और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई. शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ.
2: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है. एक माँ की पुकार.

0: माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलाकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग आप अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
1: देखो जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि APS से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफ़ी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
0: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफ़ी शैतानियाँ क्या करते थे?
1: हाँ यस, मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं काफ़ी शरारती था। मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो, काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
0: अच्छा ये बताइए शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहाँ पर आप एनडीए खड़कवासला वहाँ एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? आर्मी का तो काम ही यही आर्म्ड फोर्सेस का कि आपसे, आप में से एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार, तो शैतानियों का वो दौर वहाँ चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
1: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू में जब एनडीए पहुँचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोस्टमेट्स होते हैं, कुछ हमारे स्क्वाडन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
0: वाह क्या बात है, तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
1: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की अकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया।

0: और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ
1: वाह क्या
0: और
1: बात
0: मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे। 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया। और आगे मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस न कर पाता अगर यहाँ ना होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे? हर
0: आप दुखती रग पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: बच्चे
0: आज
1: के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ,
1: अपने
0: बट देख के ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ।
1: पास ले जा ले, ग्रिल लगा ले
0: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर,
1: जी।
0: बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा
1: आपके साथ रहता
0: हमेशा
1: है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है
0: मदद करती है।
1: आप।
0: मेरी मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज़ गॉट टू डू विद माई मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी
1: जी
0: जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत
0: बहुत
1: बड़ा
0: बड़ा,
1: योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है, लुक्का छुपी बहुत हुई,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: बहुत ही बेहतरीन गाना है।
1: हाँ
0: एंड
1: हाँ
0: वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में,
1: जी जी जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: मुद्दे
1: गए
0: उठाए बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड
1: जी
0: आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं,
1: हाँ हाँ
0: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
1: जी
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ ये कहूंगी मैं सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने, कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना, तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए, ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया, जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पोस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?

0: ही रहूंगा।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए। कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
0: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं। और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
1: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की ज़बानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनकी दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर रहता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि

0: और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पल निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो, क्या क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है। मैं और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, एस्प्री डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी, निश्चित रूप से आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी कुछ जो जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह, क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस

0: कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नय्यर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा, हमेशा लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉस, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की। आपके मिशन्स के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है। एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी। तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए? बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माय वाइफ वाज इन सेकंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
2: सो स्वीट।
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, कि मैं तो अफसर था, वो शी वाज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
2: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा, और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल। माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है, बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में। पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन में काफ़ी कारगर साबित होती है,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को, जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रहती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या

0: सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है. ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड.
0: क्या बात है.
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना. और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना
0: वाह
1: आ
0: क्या
1: जाता
0: बात है.
1: है,
0: यानी कि वो पल जिस
1: वो
0: वक्त
1: पल
0: आप प्रणय
1: जिसमें
0: सूत्र
1: उन्होंने
0: में
1: डांस
0: बंधे
1: किया है,
0: और उनका नृत्य कहीं ना
1: उनका
0: कहीं
1: बहुत
0: आपको
1: असर
0: लुभा
1: पड़ा.
0: गया. वाह क्या बात है. कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है. तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें.

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफकोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा,

0: मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा अभी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं कहीं भी नहीं मिल सकता।
1: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
0: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती था, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
0: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा जी। आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देशप्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

तेलुगु प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। इस वक्त रात के 9:30 और 22 सेकेंड हुए हैं। अब आगाज होता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: इस खूबसूरत इस सुरीले नगमे के बाद आइए अब सुनते हैं मुशायरा। शोरा है आगाज़ सरोश, समीउल्लाह समी और ज़मीन हसरत। तो आइए सुनते हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम मुशायरा।
1: ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा इस खुसूसी मुशायरे में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज के इस खुसूसी मुशायरे में शहर हैदराबाद के मुमताज़ व मारूफ शुरा शिरकत फरमा रहे हैं, जिनके इस्माए ग्रामी हैं समीउल्लाह समी, डॉक्टर ज़ामिन अली हसरत, आगा सरोश। आइए मैं इस मुशायरे का आगाज़ करने के लिए शहर के मारूफ शायर समीउल्लाह समी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
2: मोज़ सामईन, आपकी खिदमत में गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि उल्फत को हमने रख लिया नफ़रत निकाल के, उल्फत को हमने रख लिया नफ़रत निकाल के, नफ़रत के सांप रखे नहीं दिल में पाल के। मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, किरदार मस्क हो गए शीशे में हाल के। देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, रखते हैं इसलिए ही कदम हम संभाल के। मतलब है कि कासे में अपने हमने किनात को डाल के, कासे में अपने हमने किनात को डाल के, इज्जत को अपनी रखा है हमने संभाल के। आखिरी मतलब है गजल का कि लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, तरकीम करने तेरे कसीदे जमाल के। शेर है कि गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, रखता हूँ साथ अपने मैं जीने जवाल के। शेर है कि दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल के। दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए,
3: बहुत अच्छा,
2: दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल
3: क्या
2: के।
3: कहने क्या कहने।
2: शेर है के नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई,
3: क्या बात,
2: नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
3: फिर सुनाइए। वाह वाह वाह,
2: नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
3: क्या बात है।
2: शेर है कि आखिरी शेर है मकते से पहले कि खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों,
3: क्या बात, वाह वाह,
2: खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के, खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के। मकता कुछ यूं है कि कैसे मिलेगा दिल का सुकून अब हमें समी, कैसे मिलेगा दिल का सुकून अब हमें समी, मिलते नहीं जो आज निवाले हलाल के, मिलते नहीं जो आज निवाले हलाल के। दूसरी गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मतलब है कि आईने कभी झूठी वजाहत नहीं करते, आईने कभी झूठी वजाहत नहीं करते, दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते, दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते। उसने मतलब है कि भूले से हमारी वो शिकायत नहीं करते, भूले से हमारी वो शिकायत नहीं करते, अफसोस क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करते, अफसोस क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। आखिरी मतलब है कि एहसास से कनाअत की बदौलत नहीं करते, एहसास से कनाअत की बदौलत नहीं करते, हम अपनी मुसीबत की सराहत नहीं करते, हम अपनी मुसीबत की सराहत नहीं करते। शीशे की तरह साफ जो रखते हैं दिलों को, शीशे की तरह साफ जो रखते हैं दिलों को, गीबत की कभी उन पे तबाहत नहीं करते, गीबत की कभी उन पे तबाहत नहीं करते। शेरे के बाजारे मोहब्बत में मियाँ सूद और जियाँ क्या, बाजारे मोहब्बत में मियाँ सूद और जियाँ क्या, हम इश्क की दुनिया में तिजारत नहीं करते, हम इश्क की दुनिया में तिजारत नहीं करते। मकता है कि अच्छों की समी अपनी ही पहचान अलग है, अच्छों की समी अपनी ही पहचान अलग है, वो लोग कोई पैदा मुसीबत नहीं करते, वो लोग

0: वो कोई पैदा मुसीबत नहीं करते,
1: वाह
0: आईने कभी झूठी वजाहत नहीं करते, दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते।
2: वाह वाह वाह वाह।
0: कुछ गज़ल के कुछ मतलब और कुछ शेर समाप्त कीजिएगा कि मतलब कीजिएगा कि वो दौर जिसमें था भाईचारा, वो दौर जिसमें था भाईचारा है गम हमें के गुजर गया वो, वो दौर जिसमें था भाईचारा है गम हमें के गुजर गया वो, थी जिसमें इंसानियत वो इंसान सुना है हमने के मर गया वो, सुना है हमने के मर गया वो, लहू लहू है हर एक मंजर है आस्तीने वफा में खंजर, लहू लहू है हर एक मंजर है आस्तीने वफा में खंजर, अगर ना उतरा ये पीठ में तो समझ लो दिल में उतर गया, समझ लो दिल में उतर गया वो, लहू लहू है हर एक मंजर है आस्तीने वफा में खंजर, अगर ना उतरा ये पीठ में तो समझ लो दिल में उतर गया वो, ये शोहरतों की अजीब रुत है, ये शोहरतों की अजीब रुत है इसमें जो भी अनाम धुत है, ये शोहरतों की अजीब रुत है इसमें जो भी अनाम धुत है, बदल बदल कर ये वक्त चेहरा सुना के ऐसी खबर गया वो, बदल बदल के ये वक्त चेहरा सुना के ऐसी खबर गया वो, अकेला शेर के अकेला खतरों से खेलता था गमों को तन्हा जो झेलता था, अकेला खतरों से खेलता था गमों को तन्हा जो झेल था था, जब आई बच्चों की बात उसके कुछ ऐसा टूटा बिखर गया वो, जो जहाँ से निकला तो भीगी आंखें, जो जहाँ से निकला तो भीगी आंखें, जुमा पे आया तो होंठ कांपे, ये दर्द ऐसा था बेबसी का दिलों पे करके असर गया वो। आखिरी शेर है कि सफर में झूठ और मसलहत के जमीर आया ना साथ मेरे, जहां से मैंने कदम बढ़ाया उसी जगह पर ठहर गया वो, जहां से मैंने कदम बढ़ाया उसी जगह पर ठहर गया वो, मकता है कि समी पौधे लगा वो जिनके घने हो साए समर हो मीठे, समी पौधे लगा वो जिनके घने हो साए समर हो मीठे, जो याद कर ले तुझे तो बोले लगा के अच्छे शजर गया वो।
2: बहुत
0: बहुत शुक्रिया
2: समी ने मोहतरम। अभी आप समीउल्लाह समी साहब को सुन रहे थे। अब डॉक्टर जामिन अली हसरत से उनका कलाम समाप्त फरमाइए। डॉक्टर जामिन अली हसरत,
3: गज़ल का एक मतला दो शेर मुराजा करेंगे। दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, वो दोस्त होके भी दुश्मन दिखाई देता है।
2: क्या बात है।
3: दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, वो दोस्त होके भी दुश्मन दिखाई देता है। सुने हैं चर्चे बहुत उसकी भी सखावत के,
2: रो भाई बहुत अच्छा।
3: सुने हैं चर्चे बहुत उसकी भी सखावत के, पहाड़ लेके जो बदले में राई देता है,
2: बहुत अच्छा।
3: पहाड़ लेके जो बदले में राई देता है, पसीना जब भी मैं बहाता हूँ बूंद बूंद अपना, पसीना जब भी मैं बहाता हूँ बूंद बूंद अपना, अज्र में मेरा खुदा पाई पाई देता है, अज्र में मेरा खुदा पाई पाई देता है। एक गजल के दो चार शेर मुलाजा करें कि गजल का मतलब है, गुलहाय बंदगी दिले कमतर में डाल दे, गुलहाय बंदगी दिले कमतर में डाल।

0: शेर मुलाजा करें कि फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर,
1: वाह,
0: फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, शबनम का सारा दर्द गुले तर में डाल दे। फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, शबनम का सारा दर्द गुले तर में डाल दे। नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र। शकील भाई
1: जी,
0: मुलाजा करें कि नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र, यादों के फूल ला मेरे बिस्तर में डाल दे। नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र, यादों के फूल ला मेरे बिस्तर में डाल दे। सरोज साहब मख्ता मुलाजा करें कि हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, मोती सुकून दिल के मेरे घर में डाल दे। हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, मोती सुकून दिल के मेरे घर में डाल दे। गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे। एक गजल का मतलब मुलाजा करें कि हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हमारा हौसला टूटे, हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है। शेर मुलाजा करें कि यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है, यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है, जमाने भर की तहरीरों से चेहरा टूट जाता है। यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है, जमाने भर की तहरीरों से चेहरा टूट जाता है। मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में,
2: क्या बात है, वाह वाह।
0: मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में, तमाचा हाल का लगता है शीशा टूट जाता है। मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में, तमाचा हाल का लगता है शीशा टूट जाता है। वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में,
1: क्या बात
0: है। देखिए कि वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में, जरा सी देर में बरसों का रिश्ता टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत खूब।
0: वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में, जरा सी देर में बरसों का रिश्ता टूट जाता है। शेर मुलाजा करेंगे तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना, तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना, हवा जब तेज चलती है तो सहरा टूट जाता है। तड़प मंजिल की है तो चट्टान, तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना, हवा जब तेज चलती है तो सहरा टूट जाता है। तमन्ना मुझको मंजिल की लिए फिरती है बरसों से,
1: वाह वाह वाह।
0: तमन्ना मुझको मंजिल की लिए फिरती है बरसों से, मगर मंजिल के पास आते ही रास्ता टूट जाता है। मगर मंजिल के पास आते ही रास्ता टूट जाता है। मख्ता मुलाजा करें रो भाई कि हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है,
1: वाह।
0: हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है, अगर सच्चे की सोहबत हो तो झूठा टूट जाता है। हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है, अगर सच्चे की सोहबत हो तो झूठा टूट जाता है। हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है। डॉक्टर जामिन अली हसरत अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए अब मैं शहर के मुमताज़ व मकबूल मुतरन्नुम शायर आगा सरोज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे। आगा सरोज साहब।

0: वाह वाह वाह, बहुत तार मेरे सर के बहुत बहुत
1: सर बहुत, क्या बात है। और ये शेर भी देखिए।

समय ना आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। इस गीत के बाद चलिए हम आपके इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हुए आपको सुनाते हैं गीत सुरीले गाते जा। गीतों के साथ साथ हम कुछ बातें भी करेंगे, यानी एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। आज की मेरी कहानी का उनवान है कि यानी जिंदगी में चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करना चाहिए और कामयाबी किस तरीके से हासिल करना चाहिए। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था सलमान। वो एक यानी एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे, सामान्य ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसके पीछे भागना होता है, उसके पीछे यानी कोशिश करनी होती है, मेहनत करनी होती है। ख्वाब अगर रात में ख्वाब देखें और सुबह उठकर आँख खुल जाए और ख्वाब ख़त्म हो जाए तो ये कोई बात नहीं हुई। यानी ख्वाबों को अगर हम कामयाबी पाना चाहते हैं तो उन ख्वाबों को जो हमने देखे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो ये लड़का भी इसी तरीके का था कि जो ख्वाब देखता था और वो चाहता था कि वो उसके ख्वाब पूरे हों। मगर किस्मत ने इसके रास्ते में मुश्किलात की एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया और घर के तमाम जिम्मेदारी इसकी माँ के कमज़ोर कंधों पर आ गई। सलमान अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। वो अक्सर अपनी माँ को रात देर तक काम करते देखता, सिलाई कढ़ाई करते देखता, और तब वो जब भी देखता तो वो अपने मन में अहद करता था कि वो एक दिन तमाम मुश्किलात का खात्मा करेगा। घर के हालात की वजह से वो यानी आला तालीम पाने का भी ख्वाब नहीं देख सकता था, लेकिन वो चाहता था कि किसी भी तरीके से कुछ तालीम वो हासिल करे और उसके बाद वो कुछ ऐसा करे यानी कुछ कमाए जिससे हालात अच्छे हो, उसकी माँ का सुकून मिले। तो बस यही ख्वाब उसने सजा रखे थे अपनी आँखों में।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाते। सुरीले गीतों के साथ साथ हम सुन रहे हैं एक कहानी। सलमान की बात मैं कर रही थी आपसे कि उसको बहुत सारा यानी हौसला तो था, उसके पास कुछ कर दिखाने का बहुत सारे ख्वाब भी थे, लेकिन रास्ते बहुत ही मुश्किल थे उसके लिए। उसके इलाके में करीब एक बुलंद पहाड़ था। लोग कहते थे कि इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना नामुमकिन है। कई लोग कोशिश कर चुके थे मगर रास्ते की दुश्वारियों से हार मानकर वापस लौट आए थे। सलमान जब भी इस पहाड़ को देखता तो इसे अपनी जिंदगी याद आ जाती। उसे महसूस होता कि इसकी जिंदगी भी इस पहाड़ की

है। एक दिन इसने फैसला किया कि वह इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच कर दिखाएगा, क्योंकि यानी ऐसा कुछ नहीं था कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उसे कोई खजाना वहां से मिल जाए या यानी उसकी कोई लॉटरी लग जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन सिर्फ हौसले की बात थी। जब सभी लोग कहते थे कि वहां से कुछ यानी कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, वो रास्ता बहुत मुश्किल है, तो वो चाहता था कि वो अपने आप को यानी एक चैलेंज जैसा वो एक्सेप्ट करना चाहता था, उसको एक चैलेंज जैसा वो कबूल करना चाहता था कि एक को जब कोई नहीं जा सकते, इतनी दुश्वारी लोग बता रहे हैं, इतने दुश्वार रास्ता बता रहे हैं, तब मैं जाकर वहां पर दिखाऊंगा। वो देखता था कि यानी मेरे अंदर कितना हौसला है, मैं जिंदगी में कुछ कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, तो उसके लिए मेरा पहला इम्तिहान है, ये सोचकर वो आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि अगर मैं तमाम दुश्वारियों पर काबू पा लूँ, अगर मैं इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लूँ, तो यकीनन मैं कामयाब हो सकता हूँ, और तभी से यानी इसके आगे से मैं ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकता हूँ। तो ये सोच कर वो आगे बढ़ता है इस काम के लिए।

हाँ, तो सामाइन जो कहानी हम सुन रहे हैं उसमें सलमान ने तय किया कि वो पहाड़ की चोटी पर जाएगा। तो ये बात सुनकर लोग हंसने लगे, कहने लगे कि तुम जो अपने घर के मसाइल हल नहीं कर सकता वो पहाड़ पार कैसे करेगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन सलमान ने किसी की बात पर तवज्जो न दी। अगली सुबह वो अपने मुख्तसर सामान के साथ रवाना हो गया। इब्तिदा में रास्ता आसान था, ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की नर्म किरणें जमीन को रोशन कर रही थी। मगर जूं जूं ऊपर चढ़ता गया रास्ता दुश्वार होने लगा। पथरीली जमीन, तेज हवाएं और खतरनाक रास्ते उसका इम्तिहान लेने लगे। चंद घंटों बाद वो एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा था, रास्ता बंद था।

इसका दिल चाहा कि वापस लौट जाए, मगर फिर से अपनी माँ का थका हुआ चेहरा याद आया। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस चट्टान के सामने हार गया तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना कैसे करूँगा। इसने हिम्मत की, दूसरा रास्ता तलाश किया और आगे बढ़ गया। बहुत रात हो चुकी थी, सर्दी इतनी शदीद थी कि इसके हाथ कांपने लगे, भूख भी सता रही थी। इसने एक दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखा, चमकते सितारे उसे उम्मीद का पैगाम देते महसूस हो रहे थे। उसने सोचा, ये सितारे भी तो अंधेरे में ही चमकते हैं, अगर जिंदगी में मुश्किलात ना हो तो इंसान की असल ताकत कैसे जाहिर होगी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा। हम बात कर रहे थे सलमान की। यानी रात को वो सो नहीं पाया, लेकिन सितारों को देखकर उसका हौसला और बुलंद हुआ कि ये भी तो रात में चमकते हैं और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अगली सुबह वो फिर रवाना हुआ। रास्ते में वो फिसल कर एक गड्ढे में गिर गया। इसके घुटने जख्मी हो गए। दर्द की शिद्दत से इसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार इसे लगा कि शायद लोग ठीक कहते थे, शायद वो वाकई कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन इसी लम्हे इसने एक नन्हे से पौधे को देखा जो दो बड़ी चट्टानों के दरमियान उग रहा था। सलमान हैरान रह गया। उसने सोचा कि जब ये कमजोर सा पौधा इतनी सख्त चट्टानों के दरमियान जिंदा रह सकता है तो मैं क्यों हार मानूं? इसके अंदर नई ताकत पैदा हुई है। दोबारा खड़ा हुआ और चलने लगा। रास्ता मजीद कठिन होता गया, मगर अब इसके कदम मजबूत हो चुके थे। कई घंटों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो मंजर बेहद हसीन था। बादल उसके कदमों के नीचे थे, हवा ताजगी से भरपूर, सूरज की रोशनी पूरे इलाके को जगमगा रही थी। इसी लम्हे सलमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असल कामयाबी चोटी तक पहुंचने में नहीं बल्कि इन तमाम मुश्किलात पर काबू पाने में थी जो रास्ते में आई। तो है ना सामईन के रास्ता हमें सब कुछ सिखाता है, रास्ता हमें सिखाता है कि मुश्किलों पर कैसे काबू पाएं। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की धुन में तो हम निकलते हैं, लेकिन रास्ते का यानी हर एक मंजिल, हर एक रास्ते, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो मुश्किलात आती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सिखाती हैं और हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं।

जब वो वापस आया, यानी जब सलमान वापस आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे होते हैं। तब सलमान ने सब कुछ जमा किया और कहा, मैं पहाड़ को नहीं जीतना चाहता था और ना मैंने उसको जीता है। मैंने अपने खौफ, अपनी मायूसी और अपनी कमजोरियों को शिकस्त दी है। फिर उसने अपनी ज़िंदगी में भी इसी उसूल को अपनाया। उसने मेहनत की, तालीम हासिल की, कारोबार शुरू किया और चंद सालों में वो कामयाब तरीन अफराद में शामिल होने लगा। इसकी माँ की आंखों में फख्र के आंसू थे। वो तब मुस्कराया और कहने लगा कि, यानी सभी लोगों से, खासतौर बच्चों से कहने लगा कि बेटा, कामयाब लोग वो नहीं होते जिसके रास्ते आसान हों, बल्कि वो होते हैं जो मुश्किल रास्तों पर चलने का हौसला रखते हों। हर पहाड़ की एक चोटी होती है और हर मुश्किल का एक इख्तिताम। ये कहकर उसने सभी को बहुत अच्छा सबक दिया।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा। अब इस प्रोग्राम का सिलसिला हमें ख़त्म करना ही होगा क्योंकि वक्त हमें इशारा कर रहा है इस बात का। तो चलिए चलते चलते हम आपको सुना दें पयाम-ए-शब पेशकश है नदीम अख्तर ज़ैदी की।

कल थके हारे परिंदों ने नसीहत की मुझे, शाम ढल जाए तो मोहसिन तुम भी घर जाया करो। हमें जिंदगी में तवाज़ुन कायम रखना चाहिए। रिस्क, काम और जिम्मेदारियां अपनी जगह अहम हैं, लेकिन अपने घर, अहले खाना और अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना भी उतना ही ज़रूरी है जैसे परिंदे सारा दिन मेहनत के बाद शाम को अपने आशियानों की तरफ लौट आते हैं।

0: इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं और कुछ देर में समाचार आप सुनेंगे जो दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी

पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स

0: इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट

0: का भी एक बड़ा हब बनेगा, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
1: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं, और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
0: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे, और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में, तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में।

मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार,

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। बाद में प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को

नमस्कार, मैं यानी नाज स्वागत करती हूं आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे ट्यून किया हुआ है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। घड़ी में वक्त हो चला है 1:12:11:20, और ये वक्त है आपकी पसंदीदा पेशकश निशी गंधा।

यूं टकराए राह में एक शख्स से, देखते ही देखते नैना दो चार हो गए। हम मोहब्बत को गुनाह कहते थे और देखो आज हम ही गुनहगार हो गए। था जुनून इस दुनिया को जीत लेने का, एक शख्स पे दिल हारे और बेजार हो गए। रख दिए सब उसूल जूते की नोक पर, हम अपने ही कायदे कानून के गद्दार हो गए। और सुनहले कपड़े थे जो शराफत के, इश्क का पान चबाया तो बस उनकी चाहत से दागदार हो गए।

दर्द ने सबसे पहले दस्तक दी और इस मन ने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। कुछ आंसू फर्श पर गिरे और कुछ यादों में रह गए। फिर प्रेम आया बिल्कुल धीमे कदमों से, जैसे डरता हो कि कहीं जख्म फिर से जाग न जाए। उसने कुछ कहा नहीं, बस पास बैठ गया और फिर उस चुप्पी में सुकून ने अपनी जगह बना ली।

उजाले में तो हर कोई हम कदम बनता है, मगर जो अंधेरों में हाथ थामे वो साया है। भीड़ में तो सब चेहरे बदल लेते हैं, यहां जो तन्हाई में भी साथ न छोड़े वो साया है। सूरज की तपिश में जो सुकून की छांव दे, जिंदगी के हर सफर में जो दुआ बन जाए, दुनिया चाहे रूठ जाए इस दीवाने से, मगर वो ताउम्र वफा निभाए, वो साया है।

ख्वाहिशें गिर गई थी मेरी सूने से दरवाजे पर, मैं उनको ढूंढ लाऊं तो तुम चले आना। तुम्हारे गीतों की धुन अब याद नहीं आती, मैं फिर से गुनगुनाऊं तो तुम चले आना। संभल गई हूं अब टूटे दरख्तों का सहारा लेकर, मैं फिर से मुस्कुराऊं तो तुम चले आना। और सहमी हुई हूं जरा सी अब भी कि थोड़ा इंतजार कर लो, मैं जी

मैं कभी कभी सोचती हूं उन बातों के बारे में जो रह गई तुम्हारे और मेरे बीच। अगर हम साथ होते तो कितनी बातें करते। पता है मैं उन बातों को अब किसी और के साथ बांट भी नहीं पाती। लोग मिलते हैं मुझे पर मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाती। सुनो, तुम लौट आओ ना किसी बहाने से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बांटना है तुम्हारे साथ।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तुम जब कहते हो अपना ख्याल रखना, तो ये दिल थोड़ा सा सुकून में भर जाता है। जो शोर रहता था अंदर हर वक्त, तुम्हारी आवाज सुनकर धीरे धीरे मर जाता है। मैं फिर खुद को इतना सताती नहीं, हर छोटी बात पर यूं टूट जाती नहीं। शायद यही असर है तेरी फिक्र का मुझ पर, कि एक छोटा सा जुमला भी मुझे फिर से घर सा लगता है।

0: कभी कभी।
1: वो आएंगे तो कयामत भी टल जाएगी शायद, पर उनके ना आने से हर लम्हा कयामत है। जिंदगी गुजर रही है तन्हाई के साये में, अब तो मौत का आना भी एक इनायत है। दिल के टूटने की आवाज इस कदर खामोश थी कि जमाने को लगा सब कुछ सब

सलामत है, मगर मेरे अंदर जो रोज एक तूफान उठता है वही तो मेरी जिंदगी की असली कयामत है।

घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त होने वाला है 12:50 और 10 सेकेंड्स, और आप सुन रहे हैं निशिगंधा मेरे यानी नास के साथ एफएम गोल्ड पर। दो नावों में पांव पसारे, ऐसे कैसे? वो भी प्यारा, हम भी प्यारे, ऐसे कैसे? और सूरज बोला, बिन मेरे ये दुनिया अंधी है, तो हंसकर बोले चांद सितारे, हजी ऐसे कैसे?

मुस्कुराहटों के पीछे का दर्द छुपाया नहीं जाता, ये रोता हुआ चेहरा हर बार हंसाया नहीं जाता। लाख कोशिशें कर ले कोई जमाने को छलाने की, मगर आंखों का पानी पलकों में दबाया नहीं जाता। उदास चेहरे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, बिना अल्फाज के दिल के राज खोल जाते हैं। जो पढ़ सको इस खामोशी को ध्यान से, तो वो ही तन्हाई के सबसे गहरे जख्म टटोल जाते हैं।

देखिए, जिंदगी में हर किसी को बस दो ही चीजों की दरकार होती है, एक वक्त और दूसरा प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी का नहीं होता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर इस रात की महफिल में, जहां आप हैं मैं यानी नाज हूं आपके साथ, और एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहानी। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की दो प्यालियां और कुछ सौगात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं तो तुम भी गुमसुम हो जाना। महफिले मुशायरा कुछ ऐसा इस रात रख लेते हैं। इस जिंदगी ने हम दोनों को बहुत गम दिए हैं। तुम रखो खुशियां, हम तजुर्बात रख लेते हैं।

वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ये दिल रो जाए, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए, वो काम भला क्या काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो।

बड़ा नुकसान हुआ इस दिल पर एतबार करने का कि फिर किसी को मौका मिल गया हमें तबाह करने का, जिसके लिए बंद आंखों से हर राह पर चल पड़े थे, उसी ने आखिरी मोड़ पर हाथ छोड़ दिया वफा करने का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत है आपका एक बार फिर। प्रोग्राम चल रहा है गीत सुहाने, जहां आप हैं मेरे यानी नाज के साथ। ये रात है लंबी इतनी कि ख्वाब में कट जाएगी, दास्तानें बढ़ चलेंगी और ये नींद भी ना आएगी।

इश्क में मरने का मजा कुछ और ही होता है जब कातिल खुद अपनी बाहों में सुलाता है। आंखों में उनकी अक्स देखकर दम निकले मेरा, बस यही ख्वाब इस दिल को हर पल आता है।

इस रंग से सृष्टि बनी, इस रंग में सृष्टि ढली, इस रंग की ये अहमियत क्या तुमने जानी है कभी? इस रंग पे मीरा मरी, इस रंग पे राधा मिटी, फिर भी क्या जान पाई तुम्हारे रंग के माने कभी?

0: क्या बदल गईं या पिघल गईं, या गिरते गिरते संभल गईं, या संभल संभल कर गिरने का अंदाज पुराना वो ही है। क्या अब भी उतना हंसती हो, या हंसते हंसते रोती हो, या रोते रोते हंसने में एतराज पुराना वो ही है।
1: ए फूलों की रानी,

इस दुनिया नाम के सागर में एक सुंदर लड़की रहती थी, जो हंसती थोड़ा कम ही थी, बस अक्सर रोती रहती थी। मैं कहता, देखो बात सुनो, वो हिरनी नजर उठा देती। मैं कहता, ना कुछ खास नहीं, वो भीगी पलकें झुका देती।

ये आंखें भी अजीब सी गुफ्तगु करती हैं जमाने से, वो सब कह जाती हैं जो छुपाया जाता है बहाने से। जुबां तो अक्सर खामोश रह जाती है डरकर, मगर दिल का हाल बयां हो जाता है इन नैनों के पैमाने से। किताबों से ज्यादा गहरा राज छुपाए रखती हैं ये आंखें, हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द दिखाई रहती हैं ये आंखें। जो पढ़ सके इसकी खामोशी को ध्यान से साहब, उसी के लिए अनमोल तोहफा सजाए रखती हैं ये आंखें।

सच है ना, जब महबूब का साथ हो तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं लगता। एक सिर्फ उसके होने भर से सब कुछ पूरा हो जाता है, और दिल से बस यही अल्फाज निकलते हैं। न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, बस हर पल तू मेरे साथ रहे, यही तो है मेरी

0: को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवा टेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनके स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में भारतीय समयानुसार रात 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has projected India as a global hub of innovation.

नमस्कार, रात सुरमई लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर नाज। समय हो रहा है 2:11 ही, और चूंकि सुबह होने में है काफी देर, तो चलिए छेड़ते हैं कुछ ऐसे जज्बात जो हैं तो सबके दिलों में, पर शायद हमने उन्हें कहीं किसी कोने में छिपा दिया है। और इस सफर में कुछ सदाबहार गीतों का रहेगा साथ, जिनके सहारे वो जज्बात यकीनन जुबान तक आ ही जाएंगे। दूरी ने और भी गहरा कर दिया मोहब्बत को, अब हर लम्हा सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। पास थे तो गुफ्तगू में वक्त गुजर जाया करता था, दूर हो तो दिल में बस एक ही सवाल रहता है। फासले तो जिस्मों के होते हैं, दिलों के नहीं। तुम तो धड़कन बनकर आज भी मुझ में धड़कते हो, और भले ही लाख पहरे लगा दे ये जमाना, तुम बंद आंखों में खाब बनकर चमकते हो।

दिन की रोशनी में तो दिल को बहला लेते हैं, मगर ये कमबख्त रात सारी हकीकत खोल देती है। जब खामोश हो जाता है सारा जमाना सोकर, तब उसकी यादें दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। रात का ये अंधेरा मुझसे अक्सर पूछता है, कहाँ गया वो जो तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता था। मैं मुस्कुराकर तकिए में सिर छुपा लेती हूं और कहती हूं कि वो तो एक हसीन ख्वाब था, बस एक हसीन ख्वाब।

ए चांद, जरा थम कर गुजरना इस रात को, आज मेरी तन्हाई को उनका साथ मिला है, मुद्दतों बाद आई है ये हसीन घड़ी, जब धड़कनों को धड़कनों का पैगाम मिला है।

ऐ दिले नादान, तू भी अजीब जिद पर अड़ा है, जो मुकद्दर में नहीं उसी के पीछे पड़ा है। लाख समझाया इसे कि राहें जुदा हैं अपनी, मगर ये है कि उनकी एक झलक के लिए चौखट पे खड़ा है।

देखिए, रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, एक समय के बाद आपसे बिछड़ ही जाते हैं और फिर धीरे धीरे दर्द भी जाता जाता है। क्या सच में? इसी पर कहा गया है कि अब उनसे मुलाकात नहीं होती। अरे मुलाकात छोड़िए, हमारी तो बात तलक नहीं होती। वो जो कहते थे कि हर दफा साथ निभाएंगे तुम्हारा, ये नजर लंबे अरसे से ढूंढ रही है उन्हें। अब तो यादों के अलावा उनसे कहीं बात नहीं होती।

हाथ पकड़ो मेरा और पूछो कि क्या चाहिए। मैं हाथ छुड़ा कर कहूं कि साथ तुम्हारा चाहिए। मैं हाथ छुड़ा कर फिर से थाम लूं उसे और कहूं कि तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। हर पल, हर वक्त, हर लम्हा, सारी उम्र बस।

अच्छा, बांध कर तो नहीं रख सकता ना कोई भी, कभी, किसी को भी। जिसे जाना है वो तो कोई भी बहाना बनाकर चला ही जाएगा। तुम रोकते रहो अपनी बातों से, अपने आंसुओं से, उन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो तय कर चुके हैं पहले से ही जाना, उन्हें तुम्हारा समझाना, तुम्हारा रोना कभी समझ नहीं आएगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जिसे हम कह सकें अपना कोई ऐसा नहीं मिला। तेरे हम नाम मिलते हैं पर कोई तुझसा नहीं मिलता। मोहब्बत के सफर में मुसाफिर हम मुसाफिर तुम, हमें मंजिल नहीं मिलती तुम्हें रास्ता नहीं मिलता। जिधर देखो उधर सच बोलने वाले ही मिलते हैं। ताज्जुब है इस दौर में कोई झूठा नहीं मिलता। और तलब है गर रोशनी की तुम्हें तो जलाओ खुद दिया राही, बुझाने तिश्नगी प्यासे की दरिया नहीं मिलता।

कभी कभी रो देना अच्छा होता है। रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और जो लोग दिल की बातें बोल नहीं पाते, अपनी परेशानियां बयां नहीं कर पाते, उनके आंसुओं का निकलना तो बेहद जरूरी हो जाता है। ख्याल रखिएगा कि जो लोग रो नहीं पाते, वो अपने मन से कभी जीत नहीं पाते। इसीलिए ये मन कभी उलझनों में हो तो रो लीजिएगा, क्योंकि रोने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता।

शायद उनके रास्ते में हमसे बेहतर लोग ही पड़ गए, क्योंकि वो बेवफा तो न थे, मगर हाँ आगे जरूर बढ़ गए।

किसी रिश्ते की उम्र इससे पता नहीं चलती कि वो कितने साल कितने महीने रहा हमारे साथ, बल्कि रिश्ते की उम्र तो इस बात से पता चलती है कि उनका कितना सामान पड़ा है हमारे पास।

आपसे कुछ देर में सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद इस रात की महफिल की मेजबान होंगी सुरभि। फिलहाल मुझे यानी नाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest

0: digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है. श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस आपसे प्यार करता है. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया. उन्होंने फरवरी में उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई. श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है. प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं. इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया. इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुँच बढ़ाना है. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है. मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाएगी. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है. श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है. उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है. उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे. अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा. इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है. उधर चीन के गुआंगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग को हरा दिया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has projected India as a global hub of innovation and technology yesterday while addressing the WeWork Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it is democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. Prime Minister Modi has stated that India is not only preparing for the future, but is actively shaping it through innovation, technology and people-driven development. Addressing the Indian community at the Bonjour Modi program in Paris yesterday, the final event of his France visit, the Prime Minister highlighted

101 MHz प्रोग्राम है हमराही और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। ये शब भी एक मुलाकात भी गनीमत है, किसे है कल की खबर थोड़ी दूर साथ चलो, बड़ा दूर है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी है दूर सहर थोड़ी दूर साथ चलो, थोड़ी दूर साथ चलो।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बहुत खूब

हाय किसी ने की, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, कि जन्नत मुबारक रहे आपको, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, कि क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है। मैं क्या कहूँ कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता, मैं क्या कहूँ कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता, मैं क्या करूँ कि तुझे देखने की आदत है, चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, कि क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है।

जफा करता है, तेरा दर्द जब मेरे साथ वफा करता है, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है।

जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है, उसकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है। मेरे दोस्त की पहचान यही काफ़ी है, वो हर शख्स को दानिश्ता खफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है। और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे

मेरे नाजुक सवाल में उतरो, एक हर्फ जमाल में उतरो, खूब चमकोगी आओ शमशीरो, मेरे जख्मों के जाल में उतरो, नक्शबंदी में भी आती है कोई सूरत ख्याल में उतरो, मेरे नाजुक सवाल में उतरो, एक हर्फ जमाल में उतरो।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और चलते चलते अंजाम की तरफ आखिरकार हम आ ही गए हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तू खुद भी नहीं और तेरा सानी भी नहीं मिलता, पैगाम तेरा तेरी जबानी भी नहीं मिलता, मैं बीच समंदर में हूँ और प्यास से बेताब, पीने को तो एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, तू खुद भी नहीं और तेरा सानी भी नहीं मिलता, पैगाम तेरा तेरी जबानी भी नहीं मिलता।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफ़र यहीं तक 4:10 पर अरुणिमा में होगी हमारी और आपकी एक बार फिर मुलाकात। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत न

0: केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम में पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में श्री मोदी से दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 4 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे ईरान के साथ शांति समझौता लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has projected India as a global hub of innovation and technology yesterday while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it is democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. Prime Minister Modi has stated that India is not only preparing for the future but is actively shaping it through innovation, technology and people-driven development. Addressing the Indian community at the Bonjour Modi program in Paris yesterday, the final event of his France visit, the Prime Minister highlighted India's rapid transformation over the past 12 years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि, एक बार फिर आपके साथ। आगाज कर रहे हैं प्रोग्राम का कुछ पंक्तियों के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे

साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आँखों से वो बात जबानी कह देंगे, जो प्यार करेंगे जानेंगे हर बात हमारी मानेंगे, जो खुद न जले हों उल्फत में वो आग को पानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे।

मैं ज़िंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ, मैं ज़िंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ, एक ताज़ा कार नगमा तरतीब दे रहा हूँ। लम्हों के सिलसिले में जीता रहा हूँ, लेकिन मैं अपना ख़ास लम्हा तरतीब दे रहा हूँ, मैं ज़िंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों

और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कुछ गीत और कुछ इंसान हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है। कुछ पन्ने संघर्ष के होते हैं तो कुछ सफलता के, कुछ खुशियों के तो कुछ निराशा के। लेकिन अपने सफर पर मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की चुनौतियां ही कल आपकी भी प्रेरणादायक कहानी बनेंगी।

अरुणिमा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जिंदगी जब तक है तब तक मौके भी हैं। हालात कभी भी हमारे या आपके मुताबिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं, और कई बार होता भी नहीं है। लेकिन अगर हम हौसला बनाए रखते हैं, ये हमारी जीवन की सबसे असली ताकत होती है। इसीलिए आप कुछ भी करें, कोई भी काम करें, किसी चीज़ की भी शुरुआत करें, चाहे वो आपके काम से जुड़ी हुई हो या फिर आपके इश्क मोहब्बत या प्यार से जुड़ी हुई हो, शुरुआत तो आपको करनी ही होगी हौसला बनाए रखते हुए। और इसके अलावा हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है, इसीलिए रुकिए बिल्कुल भी नहीं, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, है ना?

जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। रास्ते कठिन हो सकते हैं लेकिन हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। इसलिए जो भी करना चाहते हैं पूरे दिल से करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत और हौसला ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा।

और अब अरुणिमा में चलते चलते आपको सुनवाने जा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

और इसी के साथ अरुणिमा का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। आप सुरभि को दीजिए अनुमति, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। पेरिस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। उन्होंने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एवियन में हुई G7 बैठक में उन्होंने विश्वास पर आधारित साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन

ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट में भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। श्री मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों की आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों के आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है, पर होर्मुज जलडमरू मध्य अभी ईरानी सेना की निगरानी और नियंत्रण में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूँ सुरभि आपके साथ। प्रोग्राम है भोर सुहानी। एक बार फिर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिसके जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन हर कठिन दौर हमें मजबूत बनाकर जाता है। भरोसा रखिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी में आगे रास्ता मंजिल जरूर मिलती है, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक नई सीख और एक बेहतर कल आपका इंतजार कर रहा होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

बहुत सुहानी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जिंदगी सिर्फ बोलने में नहीं सुनने में भी खूबसूरत होनी चाहिए। जब हम दूसरों को समझना सीख जाते हैं तब रिश्ते मजबूत होने लगते हैं और दिलों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। हर मुलाकात और हर बातचीत कुछ नया सिखा कर जाती है, इसीलिए जब भी किसी से मिलिए या बातें कीजिए, खुले दिल से उसे सुनिए भी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए।